0: Swan. 99.9.
1: ऐसी तेरा ही नाम लिखा रखा है. गीत अगे कलियां दे वाशे वाशा कुलदीप माणक उन्हां तो कली सुनदे आं. बहुत ही प्यारी कली अपने समय ते बहुत सुनदे हुंदे सी और बहुत ही सच्चाई कह गया इस गीत दे विच कुलदीप माणक जी.

0: यार वेहला यार अद्धी की रोटी दे दे यार वेहला यार वीर बन के तू ही दे दे मणि
1: जा परा ओए
0: यार वेहला यार तू ही दे दे
1: ओ जा अपने नहीं लेंदी आंदी
0: यार वेहला यार वीर बन के दे दे
2: ओ जा परे

0: तू हौसला रख बिल्लू दे बापू आ ले रोटी खा ले सब ठीक हो जूगा
1: तू सांभ के रख ला सवेरे बच्चियां नू खवा दी
2: बापू बापू की होया रोंदा क्यों आ
1: कुछ नहीं मेरे बिल्लिया बस ऐवें ही
2: मैनू पता आज दिहाड़ी दे पैसे नहीं मिले तू फिकर ना कर कल मैनू वजीफे दे पैसे मिल जाने आपां उन्हां पैसियां नाल आटा लियावांगे मैनू नहीं चाहिए नवे बूट नवी वर्दी नवा बस्ता
1: वजीफा
2: आहो मैं आज मास्टरां नू गल्लां करदिआं सुनिआ गरीब बच्चियां नू 300 रुपया वजीफा मिलूगा
0: जदों दा स्कूलों आया ना बस इसे गल नू लैके खुश होई जा रिहा
1: उस स्कूलों मिलने वाले पैसे तां तेरे ने भाई तू उन्हां दा जो मर्जी लै लई हुण सौ जा बंतीए तू कोई वजीफे बारे गलत नहीं कीती बिल्लू नाल
0: नहीं मैं तां कुछ नहीं दस्या
1: चंगा कीता बंतीए गरीबां घर खुशी भावें झूठ ते सवार होके आई फिर की होया आई ते सही जी आया नू खुशी है तेरा स्वागत है
0: बिल्लू दे बापू है आज जल्दी चल पे
1: तेरे पुत नू आज मेरी बड़ी लोड़ पैनी है बंतीए कल रब वल्लों अद्धी दिहाड़ी लगी सी अज मैं आप अद्धी दिहाड़ी लाके वापस आ जाणा
2: ओ यार यार मास्टर ने वजीफा कदों वंडना
3: तेनू कादी काली नाले तू क्यों पुछ रहा
2: ओ मैं पुछन दिया नी नी तेनू पता
4: ओ चुप करके बैठ जा सर ना खा एवें क्लास स्टैंड
5: जय हिंद
6: बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो बेटा मैं जीदा जीदा ना बोलांगा अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जे ठीक है बलविंदर सिंह पवन कुमार नीलचंद बलबीर कौर निरंजन सिंह सुखदेव सिंह चैन सिंह
7: आलो
2: मास्टर जी मेरा वजीफा
7: नरेश जी इस बच्चे दा लिस्ट विच नाम क्यों नहीं लिखिया
6: पर सर आपा इस बच्चे नू वजीफा किवें दे सकदे आ
2: मास्टर जी मैं भी गरीब हां मैनू भी वजीफे दी लोड़ है
6: बेटा असीं तैनू वजीफा नहीं दे सकदे
2: मास्टर जी की सरकार वालों भेजा वजीफा गरीबां लई नहीं है
6: बिल्कुल गरीब बच्चा लई है
2: मास्टर जी एदे घर ते ठंडी हवा वाला पक्खा भी लगा एदे पापे ने ते नवा मोटरसाइकिल रखिया एदा पापा ते सरकारी नौकरी करदा मास्टर जी एदी भैण ता नर्स दी पढ़ाई करन डई आ ते मास्टर जी फेर सारे गरीब किदा होए मेरे पापे दी दिहाड़ी ना लगन करके साडे घर कई कई दिन रोटी नहीं पकदी मास्टर जी मेरे वल वेखो मेरी वर्दी वल वेखो मेरी टुट्टी चप्पल वल वेखो मेरा खाद दी बोरी दा बनिया बस्ता वेखो कि ये सब गरीब होण लई काफी नहीं
7: पर काका ओ तां ठीक है पर तू है किन्हां दा मुंडा
2: मास्टर जी वजीफा ने इस गल दा की मतलब कि मैं किन्हां दा मुंडा
6: देख बेटा सरकार वल्लों चुनिया होईयां बिरादरियां नूं ही वजीफा मिलदा है तू किन्हां चों
3: मास्टर जी ए तां जट्टां दा मुंडा
7: अच्छा तू जट्टां दा मुंडा है
2: हां जी मास्टर जी
7: ते फिर काका तैनूं वजीफा नहीं मिल सकदा
2: मास्टर जी तुसी इन्हां नूं वजीफा जरूर दो पर साडे वर्गे लोड़वंदां दी जे तुसी नहीं सुननी ते फिर कौन सुनूगा मास्टर जी ए जरूरी ते नहीं कि सारे जट अमीर ही हुंदे ने जट्टां च वी जात ते गोत तों बगैर एक उच्ची नीवीं जमात हुंदी है ते जे फिर वी वजीफे लई जात ते गोत जरूरी है ते इस वजीफे दे कागज ते एक होर जात लिख लो गरीब जट ओ गरीब जट जिन्हों इस वजीफे दी ज्यादा लोड़ है
8: बिल्लू
2: पापा
8: बिल्लू ओए
2: पापा मैं आ गया
8: बिल्लू आ जा बिल्लू
2: ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ
1: ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਨਵਾਂ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ।

ए सी लेकिन फिल्म चो गीत लेकिन फिल्म जड़ी साढ़े नोबल प्राइज विनर्स रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी हंगरी स्टोन ते डायरेक्ट किया गुलजार ने ते प्रोड्यूस किया लता मंगेशकर ते उन्होंने भरा ने वधिया फिल्मों के विचों एक फिल्म जिदे च सदाबहार कलाकार विनोद खन्ना डिंपल कपाड़िया ने काम किया सी। तुसीं सुन रहे हो अपना मन पंदा पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम मेला गीतां दा सवार 99.9 एफ एम तो शाम कुमार दे नाल। प्रोग्राम नूं सुणन वास्ते www.sw999.com.au ते जां तुसीं फ्री ऑन एयर रेडियो सिडनी वैस्ट दे विच सुन सकदे हो एफ एम बैंड ते ट्यून करके 99.9 दी फ्रीकुएंसी ते सुने जा सकता। समा ऐतवार 8 बजे तो लैके 10 बजे तक। अगे सुनते साढ़े बहुत ही बेहतरीन कलाकार जिहड़े अज साढ़े विच नहीं आ गाने लिखते सी गाते सी जिन्हां दा अंदाज अपने अंदाज सी हाकम सूफी जी वो नज़रां नूं इस गाने दे विच इन्हां बोलां नूं किदां परो के गा गए हाकम सूफी जी।

0: nuts a trovo? Va, va. Jaci nahi aayi aaj. अच्छा है दस चतर कह के सारे दवाखाने की सफाई कराती
1: डाकखाना सारा साफ करता
0: मेरे को डाकखाना नहीं होता दवाखाना
1: अच्छा हाँ वही
0: अभी होर किसी दे आए तो कह देंगे
1: अच्छा
0: अच्छा नाले आए कर सीधी हो गए बैठ मरीज दे आउंदा टाइम
1: चल जिन्हें चाह मरीज नहीं आता कोई उन्हें मैनू चेक कर ला
0: तेनू नहीं मैं चेक कर सकता
1: क्यों
0: कमलिए मुड़ी का टाइम समझ दें गल
1: अच्छा
2: हौसला करो हौसला
3: डॉक्टर मर गया
0: बकवास नहीं करना हवा कट देंगा
2: हवा कट देंगा
1: बीबी तू करा ना ये तो इन्हों का तकलीफ कलाम है
0: हवा कट देंगा
3: डॉक्टर साहब मेरी आवाज ना कटो मेरी आवाज ना कटो मेरी तो पहले ही आवाज निकली है आए डॉक्टर मर गया
0: ओए तू फिर बकवास कर दा डॉक्टर चंगा भला बैठा तो तू करा डॉक्टर मर गया मैं तेरी हवा कट देंगा ओए
2: डॉक्टर जी समझने की कोशिश करो पीड़ नाल ओ आप मरण दिया
0: मेनू
3: केड़ी तकलीफ नहीं दसो मेनू सारी तकलीफ आ एक कल दी मेनू उल्टियां आउंदी आ
0: ओ तां आपां हुणे सिद्धियां कर दिंदे आ होर
3: ते दूसरा मेरे पर ढिड पीड़ आउण दी जी
0: ढिड पीड़ आउण दी आ कोई गल नहीं माड़ा जा चल साह लो साह छड्डो साह लो साह छड्डो साह लो नस तैनू नहीं आख्या तू सीधी खड़
1: अच्छा
2: की लभ्या डॉक्टर जी
0: बहुत कुछ लभ्या बीबी
3: दुनिया गड्डी आंदे डर
2: असीं तो ही जांदे हो तुसीं मैनूं गल दसो मर्जी की लभी तुसीं
0: बीबी चाहे लगी होवे खंग चाहे लगे हुण मरोड़ की क्या चाहे लगी होवे खंग चाहे लगे होण मरोड़ उल्टी दवा दर्द चाहे टीवी कैंसर कोड़ सारियां बीमारियां दा असीं कढ़िया निचोड़ ऑपरेशन बहुत जरूरी नाले ऑक्सीजन दी लोड़ केड़ी है पी डॉक्टर दा पढ़ते ने नित बाणी पंजां मिंटां दे अंदर अंदर कर दूं खत्म कहानी
3: डॉक्टर साहब मेरी कहानी खत्म ना करियो मैं हाले जीना चाहुंदा ना करियो
1: वे तू समझा क्यों नहीं ओह कहिंदे ने वी पंज मिंटां च तेरे सारे रोग बाहर हो जाणगे
2: डॉक्टर जी
0: बीबी मैं तेन फिर क्या बिच नहीं बोलना मैं हवा कर
1: देना
0: किसी पासे लख ला यार गल जल्दी करो पेशेंट जी
4: जी
0: ऑक्सीजन आ रही है
4: नहीं जी
0: नर्स हो ऑक्सीजन नहीं आ रही
1: पूरे क्षेत्र
5: हां भाई
1: ऑक्सीजन क्यों नहीं आती
5: आंदी क्यों नहीं होने लग जूंगी
0: थोड़ा उठ थोड़ा होर उठ मैं क्या कल ही पैर बहुत आ कल ही पैर रख पैर पैर पैर बस बस बस बस बस बस हां जी आ जाओ लाइट्स ऑन प्लीज जल्दी करो
1: बस बस बस
0: फोर्सा फोर्सा
1: ए जमूर ए आला आ जमूर ले लो
0: जल्दी करो बस थोड़ी की तकलीफ हो रहा हूं हिलना नहीं
1: ए बस बस बस बस बस बस
2: चलो
1: कुछ होया मेरा कहने का मतलब कामयाब होया मरीज जल्दी टेबल ते लेकर
2: जिंदगी बख्श दीस कि
1: पहला दसा अपने फिक्स रेट होंगे 1000 रुपया जल्दी करो
2: हाँ मैं मर गई 1000 रुपया
1: मैं क्या बारगेनिंग नहीं करती मेरे मैं फिर हवा कर देंगा
2: नहीं नहीं
1: जल्दी करो साढ़े को होर भी बहुत मरीज ने कई ऑपरेशन करने अज असी जल्दी कर बीबी कितने रखी फिर इन्ना टाइम
2: नहीं ठहरो पहले मैनू दसो
1: की
2: मैं बहुत बहुत डिग्रियां सुनिया जिदा MBBS RMP MD और भी जड़िया मेरे चेते नहीं आंदिया तो वो तो मेरी समझ आंदी है पर आ डिग्री मेरी समझ नहीं आंदी आ केड़ी है KDMP
1: ए डिग्री बीबी तेरी समझ तो बाहर डिग्री है
2: ना ना फिर भी
1: ए बीबी तेनू मैं दस दियां केडी एमपी दा मतलब है खिच तू मैट्रिक पास नर्स उतरो मेरे प्रोफेशन दा लूप होल नहीं दसना किसे नू मैं तेरी हवा कर देंगा
3: अच्छा भुल गई डॉक्टर साहब भावे तुसी खिच तू मैट्रिक पास कीती है ते भावे ओदा कीती मेरे लिए ते तुसी रब ही
2: हो रब रब
3: पर एक गल दी समझ नहीं जे मैनू आई
1: केड़ी दी
3: आम तौर ते डॉक्टर अपने मरीज नू सीधा लम्मा पा के उत्तों लाइटां सुट के उत्तों दी प्रेशर करदे ने
1: करदे
3: तुसी मैनू सब कुछ उल्ट कीता पुठा लम्मा पा के थल्ले लाइटा मार के आप लम्मे पै के थल्ले प्रेशर किया जी ये चक्कर होया
1: भाई साहब जिम्मे सियाने कहते ना भी बंदे नू अपनी पुरानी आदत नहीं आती होंगी
3: पुरानी
1: मैं दस दी भाई भी डॉक्टर डॉक्टर बनने तो पहला मोटर मकैनिक सी
4: ए सी खिच धू के मोटर मकैनिक डॉक्टर भला देखो जी डॉक्टर तो बन गया पर वो मकैनिक होने के नाते वीडियो क्लिप से सी के मरीज़ नू मंजे ते लम्मा पा के ये मंजे दे थले वड़ के बैटरी दे नाल उदा सारा ऑपरेशन किया जिदा मकैनिक कारां दा करदे आ देखो जी जे डॉक्टर नू मकैनिक बना दईए तो फिर वो मकैनिक जिहड़ा कारां दी रिपेयर फिर वो सलंसर विच दी जां उल्ट तरीके ना करेगा ये उल्टा हो गया एक मकैनिक नू डॉक्टर बनाता तो जदों ऑपरेशन करन दा टाइम आया लोक ऑपरेशन डॉक्टर जिहड़े मंजे ते मरीज नू सीधा पा करदे आ ते इह उहनू पुट्ठा पा के तां मंजे थल्ले वड़ के इहने ऑपरेशन कीता इह सी कुछ हास रस दीआं गल्लां बातां
6: स्वा 99.9
4: की सुणदे आ मामा सदीक ते रणजीत कौर दी आवाज़